राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

गुरु की संगत, आप आत्मरश कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कार योग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवन करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए कीर्तन।

इसी तरह ये जीवन सेवा करया करदा सी, सेवा करवाया करदा सी। पर आज जद जीवन सेवा करदा करदा पश्चिमी पासे वल आया ताकि देखदा है एक आदमी सुता पे ते पैर उस दे मेहराब वल हन। मुसलमाना विच निमाज मक्के वल मुंह करके पढ़दे हन। मक्के वल पैर करनी उन्हां विच भारी बेअदबी है। सो उस जीवन नूं गुस्सा चढ़िया ते आके उस सुते आदमी नूं लत मारी ते कहा तू कौन है जो खुदा वल पैर कर

शरीफ वांग हुंदा सी। इन्हां दे आजान ते सन्मान करने नाल अरब दे होर देशां दे आए हाजी जो हुण आले दुआले आ रहे सन अदब विच बैठ गए। गुरु जी दा जवाब सुन के ते वरत्या ए कौतुक के मक्का घूम गए। सारे सन्मान करन लग पे गुरु।

दुनिया का असर डाढ़ है, खुदा किस तरह मिलता है। ये सुन के धन गुरु नानक साहब जी का रंग पलटे है, जिसनू उन्होंने खुदा कहा सी, गुरु दिया कोमल दिल प्रभां दा प्रीतम सी, नैन उचे हो गए ते डाढ़े मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाना शुरू किया, जिड़ा आप

तू वड्डा है, करीम है, दया करन वाला, बेऐब है, तेरे विच कोई ऐब नहीं, तू दुनिया नु पालन वाला है। ए दुनिया मुकामे फानी, ए दुनिया खत्म होने वाली है।

नानी की गल कहंदा हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे पैरां दे खाक हो जा।

मक्के अंदर पूज कराई। फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी दिया खड़ावा यादगिरी ते जियाहत वास्ते रख ली। इस गल की गवाही

एक ही घटना हो गई है, शायद मेरी अखां विच खलल आ गया है। आकाशवाणी हुई, तेरी नजर विच फर्क नहीं पिया। कब एक कमजोर तीवी नू, एक कमजोर औरत नू दर्शन देन गया है, उदे स्वागत ले गया है, जो इस पास से आ रही है।

ना तो केवल सिख ते हिंदू बल्कि मुसलमान तक अखी वेखी गल दी तरह मनदे हन जिहा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब बिस्मिल फिरोजपुरी अपनी एक पुस्तक विच गुरु जी दे मक्के जान दा जिक्र करदे होए

ओ कटोरा समुंदर विच सुट दिता, कटोरा डुब गया। ओ लड़का टप्पण लग पिया, खुशी नाल नचन लग पिया। फकीर कहन लगा, काका कटोरा तेरा डुब गया।

मैं घरों कटोरा लेके आया, किस कटोरे विच समुंदर दा पानी भर लवां। सवेर दा लगा सी पर कटोरे विच सारा समुंदर मैं ना भर सके। फिर ख्याल आया जे कटोरे विच समुंदर दा पानी नहीं आ सकदा, कटोरा तां समुंदर विच समा सकदा है। मेरा कटोरा समुंदर विच समा गया, मेरी चिंता खत्म हो गई। उस फकीर ने उस लड़के दे पैरां दे

अपने इस दिमाग दे विच उस परमेश्वर दी कायनात उस परमेश्वर नूं भर लवां उहदा अंत पा लवां पर हुण पता लगा उस मंदर दी तरह अथाह है उहदा अंत कोई नहीं पा

सच दे रस्ते ते तोर के अनेकां जीवां दा उधार कीता। एथे ही बस नहीं गढ़ बगदाद जो पीरां दा गढ़ सी, उस बगदाद विच भी जाके आपने सच दा उपदेश दिता। आख्या अकाल पुरख दी लीला दा कोई अंत है, तुसी क्या ए सच मनदे हो? सत पताल ते सत आकाश हन, इस तो परे होर कुछ नहीं। बाबे ने आख्या नहीं लख पाताल आकाश लख, लखा ही आकाश हन ते एथे ही बस नहीं, फिर पता नहीं कितने को होर भी हन। ते बाबे ने अपनी अजबत ते नाल ओ लखा पताल ते लखा आकाश अखी विखा के अकाल पुरख वाहिगुरु दी बेअंत लीला नू प्रत्यक्ष करके दिखाया। सारा बगदाद आप दे चरना ते झुकिया, मदीने ने आप जी दे चरना ते सजदा कीता, मक्के विच जाके सच दा राह दर्शाया। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह ए रमणन करके ते फिर अज किथे पहुंचे हन। भाई साहब गुरदास

जोगी देख चरित्र नू मन विच रिसक घनेरी खाई। बड़ा दुख होया मन बड़े क्रोधित होए मन विच रिसक घनेरी खाई आख्या ए किधरों आ गए हन। भगतियां पाई भगत आन लोटा जोगी लिया छपाई बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जहा लुकाई। वेख चरित्र जोगी खुन साई ए चरित्र वेख के योगियां ने बड़े मन विच क्रोध कीता। रास तारियां ने आके रास पाई ते जो लोग खुश होके

फिर उदासियां वाला पेक बनाया ते हुण फिर संसारी कपड़े पहन के इत्थे बैठे हो। तुहाडा की धर्म है? भाई साहब गुरदास जी लिखदे हन, खादी खुणस जोगी सरा, गोश्त करन सबे उठ आई, पुछे जोगी भंगर नाथ, तोए दुध विच क्यों कांजी पाई, फिटिया चाटा दुध दा रिड़कियां मक्खन हाथ ना आई, ते इस दा भाव की सी, आख्या पेख उतार उदास दा वत, क्यों संसारी रीत चलाई, उदासियां वाला साधुआं वाला।

के फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन हाथ ना आई पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई इसका जवाब दियो ता तन गुरु नानक पाछा ने जवाब दिता नानक।

दे महान आगमन मेरे आ रहा है। ए दिन ए रातां ए बख्शीशां दे समय हन, इस नूं जप जप के असी सफल करना। हो सकदा इना दिना दा अमृत वेले जागया होया, गुरु नानक सानू सदा लई अमृत वेला दे देवे। जो सिदक श्रद्धा प्यार दे नाल भाई कीर्तन विच जुड़दा है, कीर्तन दी समाधि लाउंदा है, ए जपा सिर जप है, तपा सिर तप है। कितना भी कठोर हिरदा होवे, अज इस तरह सिद्धा ने धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ए गुरु नानक जिसने एक वेरा भी तैनू धन किया है ना, ओ जन्म मरण तो रहत हो गया। इसलिए जगत दे गुरु हन कौन क्या।

बाबे ने आख्या ओए चंद्रया असी कुछ तेरे कोलों मंगण नहीं दे आए असी ते तेनू प्यार करके तेरी मित्रता करके तेनू मिलन वास्ते आए हैं बाबा जानी जान है बाबा ते लोक परलोक दी सोझी रखदा है बाबे दे ओले की हो सकता है गुरु नानक दरवाजे ते खलोते आवाजा मार रहे ने ओए मित्रा चंगा तू मित्र है किन्नी प्यार नाल तैनू मिलन आए हां ते तू अंदर लुकिया बैठा है संसार है घर परिवार दे आखे लग के ए जीव कई बार बुजुर्गां दे नाल इहो जिहियां गल्लां करदा है पर सतसंगियो बाबा नंद सिंह जी बख्शिश करदे सन जिहड़ा इंसान अपने बुजुर्गां दा सत्कार नहीं करदा बुजुर्गां दी संभाल नहीं करदा वो कदी भी गुरु नानक दी नजर विच बख्शिया नहीं दे जांदा।

जाओ निवाजूही। ए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे रब दा घर हन, इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ए रब दा, वाहिगुरु दा, राम दा घर है, भगवान दा घर है, पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है, एक पासे कहिंदा है ओ रब दा घर है, जद झगड़े आपस दे होण ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन, कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलो पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब, मेरा परमेश्वर खुश हो रहा है। अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल जाएगा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

तेरे नाल किवें मिलाप होवे मोहे परदेशन तू अपने देश विच वस रहे हैं मैं परदेश विच